0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: ओखाना कराई के खुशबू गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौथी गम में आ गया ना यारा।
3: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
3: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा।
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
3: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी,
2: अपने दोस्तों को बुला।

0: फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
1: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
0: पिशावरी डेरा।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
0: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
0: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
0: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
1: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
0: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
0: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
4: Get ready to move.
5: It's all about the beat.
6: Wow, FM.
7: Only tune super hit channel.
8: Fizz on 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beats.
3: Wow,
4: Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो.
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए.
8: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया.
7: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन.
8: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो.
7: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसीब हेज एंड मुकी. अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत. फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL. अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए. जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम. बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999. एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन. हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस. Book your tickets now. xlcnawab.co.uk.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
6: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
6: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
6: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट.
6: टेस्ट भी, वाइब भी. हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
10: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
11: You are listening 97.1 FM.

0: 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है?

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्त दा मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: ओखाना कराय के खुशबू गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग

0: और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station.
4: That plays foot tapping music.
5: Hazar 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
7: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा।
7: जो मंगना सी वो तो मिल गया।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
8: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
9: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
8: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
9: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
8: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी, एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ xlcnawab.co.uk।
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
11: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
11: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
11: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
11: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
11: टेस्ट भी वाइब भी।
12: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
13: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
12: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
13: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
12: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
13: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
14: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
15: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो हेलो हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल, एक्साइटिंग प्लस एंटरटेनमेंट मॉर्निंग टू ऑल माय लिसनर्स हु आर लिसनिंग मी राइट नाउ। सी तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सब सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। सी तो लिसनर्स, जैसा कि है आप सभी को मालूम कि रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहाँ आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का डोज। सो पूरी कोशिश तो यही की जाती है कि हम शो में बात करें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन की, मोटिवेशन की और साथ ही साथ इंस्पिरेशन की, और मज़ीद ये कि शो में हो आपकी और मेरी कम्युनिकेशन। एंड अगेन, जैसे जैसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए वैसे वैसे ही हम शो में थोड़ी सी इंटरटेनमेंट को भी ऐड करें, जैसे कि म्यूज़िक। सो हर आने वाले नए दिन के साथ आज के दिन भी हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ कुछ मोटिवेशन से जुड़ी गपशप और साथ ही साथ कुछ शोबिज़ की दुनिया की, जैसे कि एंटरटेनमेंट न्यूज़। सो द लिसनर्स, अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत दिन का आगाज़ बाकायदा तौर पर नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का है। आइए हम लगा करते हैं इस खूबसूरत दिन का आगाज़। सो द लिसनर्स, अगर अभी तक हैं आप सुस्ती में मुब्तला तो सुस्ती को छोड़ दीजिए और बाकायदा तौर पर फ्रेश हो जाइए, क्योंकि एक एनर्जेटिक और आपके ड्रीम से भरा हुआ एक नया दिन आपका मुंतजर है, जो चाहता है कि आप उठें, घर से बाहर निकलें और अपने उन गोल्स की तरफ, उन ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ें जिनको हासिल करने के लिए आप बेताबी से सोचते हैं। सो द लिसनर्स, इंतज़ार किस बात का है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे इस डीवा डायलॉग का सफ़र बने या फिर आप हमारे साथ करें बाकायदा तौर पर गपशप, सो उसके लिए आपको डायल करना होगा 01157100971। ये है हमारे स्टूडियो का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी कि मेरा और आपका रबते का नंबर। इस नंबर के ज़रिए से ना सिर्फ आप हमारे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं बल्कि आप बता सकते हैं हमें अपने हवाले से, आज के दिन के हवाले से, और ये सब भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं या फिर आप इस वक्त हमें कहां से ट्यून कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें या फिर कुछ ऐसा डिस्कस करें जो आप सुनना चाहते हैं, सो वो सभी भी आप हमें बता सकते हैं। तो जी लिसनर्स, अगर आपको सुनना है कोई भी अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक या आप चाहते हैं कि आप अपने किसी चाहने वाले को कोई भी अच्छा सा ट्रैक करें डेडिकेट, सो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी बातों के लिए आपको बस इस नंबर को डायल करना होगा, नंबर पर जाना होगा और अपने नाम के साथ कुछ भी लिख या जो कुछ आप चाहते हैं किसी से शेयर करना, आप हमसे इस नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हैं। वेल, पूरी कोशिश तो यही की जाएगी कि डीवा डायलॉग में वो तमाम तरीके शामिल की जाएं जो कि हमारे लिसनर्स सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताती चलती हूँ कि किस तरह से आप हमें ट्यून कर सकते हैं। सो आप हमें www.radiofaza.com.uk, इट्स अवर ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। सो द लिसनर्स, ना सिर्फ आप इस वेबसाइट के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड, सो आपको वो कहाँ मिलेगी, इस वेबसाइट पे। साथ ही साथ आप ये जान सकते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM पर कौन से न्यू इवेंट्स आने वाले हैं या फिर आपका पसंदीदा आज कौन से दिन किस शो में है आने वाला। सो इस तरह की तमाम तर मालूमात आपको कहां से मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट है।
सोच लिसनर्स, अगर अभी तक आप अपने इस बोरिंग दिन में बैठे हुए हैं या फिर सोच रहे हैं कि आज का ये दिन कितना है उदास, तो इस उदासी को ख़त्म किया जा सकता है किस तरह से, हमारी अच्छी सी सुरीली सी आवाज़ों को ट्यून करके। साथ ही साथ बताती चलती हूँ कि हमारी एप्लीकेशन है रेडियो फ़िज़ा 97.1 FM, जिसे आप इजीली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, सिंपली आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहाँ जाके आपको सर्च करना है रेडियो फ़िज़ा 97.1 FM। और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल और बन जाइए हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो दी लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो मैंने एक एक करके सभी आपसे शेयर कर दिए, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें दिला सकते हैं अपनी मौजूदगी का एहसास। सो वेल लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और इस खूबसूरत से दिन का आगाज कर चुके होंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं नहीं किया तो आइए मिलकर करते हैं बाकायदा तौर पर इस दिन का और इस प्रोग्राम का आगाज, क्योंकि अब से लेके ठीक दो घंटे तक हम रहने वाले हैं साथ साथ। सो ये गुफ्तगू का गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा। सो जी लिसनर, जैसा कि हमेशा हर दिन के आगाज़ में मैं कहती हूँ कि एक अच्छे दिन का आगाज़ इस तरह से किया जा सकता है कि हम अपने आप को वो तमाम तर एनर्जी की डोज दें जिससे हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहें, रिफ्रेश रहें और बहुत सारा काम कर सकें। सो जी लिसनर्स, एनर्जी कहाँ से आती है? जी हाँ, एनर्जी आती है एक अच्छे हेल्दी मील से। सो आपको हमेशा मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप मत किया करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक रिसर्च के मुताबिक भी अगर आप दिन में कोई भी मील स्किप करना चाहते हैं सो मोस्ट प्रोबेबली आप दिन का भी कर सकते हैं एंड रात का भी, लेकिन कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एक नया दिन शुरू करते हैं तो आपको ज़रूरत होती है बहुत सारी एनर्जी की, क्योंकि आपके बहुत से नए टास्क होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें आपको करना होता है कंप्लीट। सो वो आप तमाम तर काम तभी इसी सूरत में कर सकते हैं जब आपके पास हो एनर्जी, ताकत दिन को गुजारने की, आगे बढ़ने की और अपने इस जस्तजू को जारी रखने की। सो वेल, बात हो गई एनर्जी की, तो ये वो एनर्जी है जो आपको एनर्जेटिक करेगी काम करने के लिए। अब जरा बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। सो माइंड को रिफ्रेश करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज म्यूजिक। वैसे भी कहा जाता है कि म्यूजिक इटसेल्फ इट्स अ थेरेपी, और अगर आप कोई भी एक्सपेंसिव थेरेपी नहीं ले सकते तो आप ले सकते हैं म्यूजिक को एज अ थेरेपी। सो जी इसी तरह से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं एक अच्छे से खूबसूरत से ट्रैक के साथ। तो फिलहाल के लिए तो ये वो ट्रैक है जो मुझे पसंद है, क्योंकि अभी तक आपने मुझे नहीं बताया कि आपको कौन सा ट्रैक सुनना है। सो इसीलिए मैं ये ट्रैक शो में शामिल कर रही हूँ। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक की उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

वेल लिसनर, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कल हमने इस कदर गपशप की और बातें करते करते करते वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिन पे मैं गुफ्तगू करना चाहती थी लेकिन सम हाउ ड्यू टू द टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकी। तो मैंने सोचा था कि आज जब हम शो स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही हम उन चीज़ों को कर लेंगे डिस्कस, जिसमें तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाता है हमारी स्किन केयर एंड देन द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं उसको, लेकिन अभी शो में वक्त हुआ है यानी कि टीवर डायलॉग में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो टीवार डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैप पे। तो लिसनर्स, ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। सो अगर आपने भी अभी अभी हमें ज्वाइन किया है सो आप हमें बता सकते हैं कि आपने हमें कहां से ज्वाइन किया है और आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। सो वेल लिसनर्स, आज स्टार्ट करते हैं डीवा डायलॉग में थोड़े से इंटरटेनमेंट से। जैसा कि आज का हमारा फर्स्ट सेगमेंट इंटरटेनमेंट बेस होगा, जिसमें मैं शेयर करूंगी आपसे मूवी रिव्यू, जो कि कल हमारा अनफॉर्चुनेटली रह गया था, तो मैंने सोचा कि आज उसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो बताइए लिसनर्स, आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अभी तक देख ली है। सो अगर आपने देख ली है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो गो एंड वॉच नाउ बिकॉज इट्स द बेस्ट मूवी इन द मार्वल सीरीज। मैंने वैसे अभी तक जितनी भी मूवीज देखी हैं उनमें मुझे वैसे ऐसे उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी अच्छी लगेगी या फिर निकलेगी, क्योंकि ऐसा ट्रेलर तो मैंने देखा नहीं था, बट जितनी भी मैंने स्पॉयलर्स या फिर कह लो सोशल मीडिया रील्स देखी थी तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो यही कहा था कि मूवी बहुत इमोशनल है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, मत देखो ये वो एंड ऑल ऑफ दिस। सो मुझे तो बस यही लग रहा था कि अगर मैं मूवी देखूंगी तो समहाउ मैं भी इमोशनल हो जाऊँ या बस बोरिंग लगे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मूवी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी बहुत अच्छी थी, साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके म्यूज़िक की सो इसका म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा कमाल का था। आई थिंक सो सभी गाने बहुत अच्छे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बाकी ये कि अगर हम एक्शन सीन्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक थे, मतलब आपको उस तरह से फिक्शनल नहीं लगेगा ना ही उस तरह से फेक लगेगा। और बस ये है कि वाकई मूवी थोड़ी सी इमोशनल थी एक पॉइंट पर जाकर, जब मैं मूवी देख रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि ओह ये तो वही मोमेंट आ गया जिसका मैंने काफ़ी सारे स्पॉयलर्स में देखा था। सो अगर मैं इसको रेटिंग करूँ आउट ऑफ 10 तो आई थिंक इट्स अ सॉलिड 9 out of 10, क्योंकि म्यूज़िक अच्छा था, एक्टर्स अच्छे थे, कास्टिंग अच्छी थी और स्टोरी लाइन भी अच्छी थी। सो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, सो एक स्पॉइलर मैं आपको दे देती हूँ, सो हो सकता है मे बी बहुत सारे लोगों को ऐसे लगे कि मूवी में अ काइंड ऑफ लव ट्राइंगल भी आ जाएगा, सो जो कि पहले किसी भी आई थिंक सो मूवी में नहीं था, इस मूवी में है। वेल, अभी इस बारे में देखते हैं आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, क्योंकि फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, ओके फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, अगर समहाउ इफ यू लाइक समवन या समबडी और वो आपको उस तरह से नहीं लाइक करता या आपको पसंद नहीं करता, तो आई थिंक सो यू शुड गिव अ चांस टू अनदर वन जो कि आपको दिल से लाइक करता है या फिर आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि आप उसके साथ रहो जो आपको पसंद करता है, ना कि उसके साथ जिसे आप पसंद करते हो। सो मेरे पर्सपेक्टिव से तो मुझे तो ऐसा ही लगा मूवी को देख के। वेल, हर इंसान का, हर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। वेल, जब मैंने ये मूवी देखी सो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही थी तो उनका भी यही कहना था कि उनका अपना पर्सपेक्टिव था, मेरा अपना पर्सपेक्टिव था, लेकिन अगर ओवरऑल हम एक बात पे इत्तेफाक करें तो मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं, म्यूज़िक भी अच्छा है। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो गो एंड वॉच नाउ, और अगर आपने देख ली है सो डू लेट मी नो, आप मुझे बता सकते हो कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है या फिर आपको इसमें कौन सा करेक्टर अच्छा लगा या फिर आपको क्या लगा कि किस पॉइंट पर एक्ट्रेस को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था।

सो वेल लिसनर, जहाँ हम बात कर रहे हैं मूवी की, तो उसी के साथ ही एक मूवी से रिलेट करता हुआ गाना मेरे आंखों के सामने से गुजर रहा है. सो आई थिंक वी शुड गिव इट अ चांस और उसे कर लेना चाहिए प्रोग्राम में शामिल. तो जी आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक. ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और साथ ही मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये ट्रैक.

चलिए लिसनर्स, आइए जरा थोड़ी सी मोटिवेशन से मुतल्लिक बातचीत कर लेते हैं। सो कहा जाता है कि ट्रू मोटिवेशन इज द फ्यूल दैट टर्न्स योर पोटेंशियल इनटू रियलिटी बाय चेंजिंग हाउ यू व्यू चैलेंजेस। Whether you need to push through a tough work day, start a new habit, or overcome an expected setback. So basically, the right जो perspective होता है वो हमेशा shift करता है आपके mindset को instantly. इसीलिए कहा जाता है कि motivation is something जो आप खुद से feel कर सकते हो, खुद से ही relate कर सकते हो. Motivation is not like कि अगर फलां बंदा एक चीज़ से मोटिवेट हो रहा है तो आप भी उसी चीज़ से मोटिवेट हो गए. हो सकता है कि आपके लिए द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन डिफरेंट परस्पेक्टिव्स हों, डिफरेंट चीज़ें हों. सो हर इंसान के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट होता है. सो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा मोटिवेशनल सा कोट जो मैं लेकर आई हूँ शेयर करती हूँ. तो हमेशा से कहा जाता है कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिन विद अ सिंगल स्टेप. सो हमारा ये कोट ये कह रहा है कि कोई भी जो जर्नी होती है, सफ़र होता है जो 1000 मीलों तक चलता है, हमेशा कहाँ से शुरू होता है? एक सिंगल स्टेप से, एक छोटे से कदम से. सो आज आप वो छोटा कदम उठाएंगे तो कल आप ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे. कुछ इसी तरह से अगर हम इसको अपनी नॉर्मल जिंदगी से रिलेट करें तो हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं. सो मैं बारी बारी एक एक करके वो सभी एग्जांपल्स आपसे शेयर करती हूँ. लेकिन फिलहाल के लिए डीवा डायलॉग में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार. तब तक के लिए हमारे संग इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें और शो में हमारे साथ शामिल होते रहें और अपनी कीमती आरा का इजहार करते रहें. We will be right back after a very short break, so stay tuned with us.

0: कबाब और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
1: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है
2: तो फिर सुनना छोड़ो यार, पहुँच जाओ जल्दी।
1: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
0: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
1: पिशावरी डेरा।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
0: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ आपके पसंदीदा आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग।

जैसा कि लिसनर्स ब्रेक से पहले मैंने आपसे शेयर किया था बहुत ही अच्छा सा मोटिवेशनल सा कोट, और मैं आपको बता रही थी कि ये कोट हमारी रियल लाइफ एग्जांपल से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। सो डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स होती हैं जो हम इस कोट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इतने में आ चुकी थी कमर्शियल ब्रेक, तो वो फिर एक्सप्लेन नहीं हो सकी, तो आइए अब ज़रा उनको एक्सप्लेन करते हैं। सो कोट सिंपली ये कहता है कि जब भी आप कभी एक लंबी मुसाफत शुरू करते हैं तो वो शुरू होती है एक छोटे से कदम से। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि लंबी मुसाफत से क्या मुराद है। सो लंबी मुसाफत से मुराद कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसी न्यू चीज जो आप स्टार्ट करते हैं, यानी कि अगर आपका पैशन है कि आप बने प्रोफेशनल कुक या फिर शेफ, सो आई नो इट्स अ न्यू जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू। सो अब ये एक लंबी मुसाफत है क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू कुक, यू हैव नो आइडिया कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। सो यू जस्ट स्टार्ट अ लिटल स्मॉल स्टेप। सो जैसे ही आप एक छोटा सा स्मॉल स्टेप शुरू करेंगे तो उसी हिसाब से फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड देयर इज़ अ टाइम दैट कम्स इन योर लाइफ जहाँ आपको आपका वो गोल मिल जाएगा और आप हासिल कर लेंगे उस चीज़ को जिसके लिए आप यहाँ आए हैं।

सो वेल लिसनर्स, ये तो थी एक सिंपल सी शॉर्ट सी एग्जांपल। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ तो जस्ट इन केस मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। सो व्हेन आई स्टार्टिंग माय करियर एज अ आरजे रेडियो, सो द फर्स्ट थिंग यूजुअली शुरू शुरू में ऐसा ही होता है कि भले ही आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको नहीं मालूम होती, जिनके चलते आप को मुश्किल आ रही होती है। सो देर आर फ्यू थिंग्स डेट हैपन टू मी। सो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं लिटिल लिटिल स्टेप से आगे बढ़ती गई, सो देर इज़ अ टाइम डेट कम्स इन माई लाइफ जहाँ आज मैं आप सभी के सामने हूँ और आप मुझसे इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं। सो हमारा कोट यही कहता है कि कोई भी बड़ा काम, कोई भी नया काम, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी या कुछ ऐसा जो आप शुरू से करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे होते, तो उसके लिए आप किस तरह से स्टार्टअप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं एक छोटे से स्मॉल से स्टेप से। वेल, ये था हमारा आज का फर्स्ट कोट। उम्मीद तो यही है कि आपको ये कोट बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर इस हवाले से है आपकी भी कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल या फिर कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, सो डू लेट मी नो। आप हमें बता सकते हैं, सिंपली हर उस चीज़ को शो में शामिल किया जाएगा जो कि हमारे लिसनर्स को है पसंद। सो फिलहाल के लिए हमारे एक लिसनर की फरमाइश है कि एक अच्छा सा प्यारा सा ट्रैक शो में किया जाए शामिल, सो हम क्यों नहीं, ज़रूर शामिल करेंगे। सो जैसा कि आपको मालूम है कि कोशिश हमारी होती है कि हम वही गाने शो में शामिल करें जो कि हमारे लिसनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अब ये इनकी भरपूर फरमाइश पर आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक, और ट्रैक के उस पर फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी इस मोटिवेशन को।

लिसनर, स्टार्ट करते हैं अगला हमारा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कोट. सो द नेक्स्ट कोट इज, यू डोंट हैव टू बी अ ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट. सो ये बेसिकली हमारा आज का दूसरा मोटिवेशनल कोट है. और हमारा आज का दूसरा मोटिवेशनल कोट ये कहता है कि आपको कभी भी ग्रेट बनने की ज़रूरत नहीं होती कि आप कुछ नया शुरू करें, लेकिन आपको ज़रूरत होती है कि आप इसलिए शुरू करेंगे शायद आप इससे ग्रेट बन जाएं. सो बेसिकली हमारा ये कोट ये कहता है कि जैसे कि हमारी अमली ज़िंदगी में बाज़ुकात हम कोई भी काम करने लगते हैं या रोज़मर्रा में दीगर हम मामूलाते ज़िंदगी सफ़र कर रहे होते हैं, काम काज कर रहे होते हैं और इस ज़िंदगी के दारो मदार को आगे बढ़ा रहे होते हैं. सो जब हम काम कर रहे होते हैं तो देर आर लॉट ऑफ न्यू टास्क जो कि अमली ज़िंदगी में आते हैं जिनको करना पड़ता है. बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपने, मैंने, हम सब ने पहले कभी भी नहीं किए होते. और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पर नहीं करते, लेकिन जब हम पर वो आन पड़ती हैं तो हमें करनी पड़ती हैं क्योंकि इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ. सो अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करने लगे और हम स्टार्टिंग में ये सोचें कि ओह हम तो इसमें प्रो नहीं हैं, हमें ये काम ठीक तरीके से नहीं आता, तो क्या हम स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम स्टार्ट कर लेते हैं और अपना माइंडसेट इस तरह से रखते हैं कि अच्छा चलो ये काम करते हैं, करते करते करते आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो करेंगे तो ग्रेट बन जाएंगे. सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ मोटिवेशन जो आपको मोटिवेट करती है कि यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग. सो ये वो तमाम तरह चीज़ें होती हैं जो हमारे रास्ते में हाइल हो रही होती हैं, जो कि हमें ज़रा रोक रही होती हैं. लेकिन रिमेंबर वन थिंग, कामयाब वही लोग होते हैं जो इन तमाम तर हथरात से, तमाम तर स्टेप से और तमाम तर मराहिल से गुजर कर आगे बढ़ते चले जाते हैं. वेल टू माई लव लेडी वॉज, ये आपने डिसाइड करना है कि क्या आपने उन लोगों में से बनना है जो कि इन छोटी छोटी चीज़ों से, इन छोटे छोटे एक्सक्यूज़ की वजह से पीछे रह जाते हैं, या फिर आपने उन लोगों में से बनना है जो कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं और रूटीन से हटकर अनयूजुअल काम करते हैं.

इस तरह आई के शो में शामिल करते हैं एक अदद और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कोट। सो ये जो हमारा मोटिवेशनल कोट है ये ज़रा हार्ड टाइम्स के लिए है। होता है ना कि ज़िंदगी में कभी कभी कोई मुश्किल हालात सिचुएशन आ जाती है, सो ये ज़रा उस चीज़ को डिफाइन करता है। सो सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द कवरेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सो हमारा ये कोट ये कहता है कि सक्सेस कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती और ना ही फेलियर कभी भी हमेशा के लिए होता है, बल्कि ये तो एक कवरेज होती है, एक करेज होती है जो कि हमारी मदद करती है कंटिन्यू करने में, आगे बढ़ने में, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में।

चलिए तो लिसनर्स, एक अदद और अच्छा सा मोटिवेशनल सा कोट शामिल कर देती हूँ शो में, जो कि आपको माइंडसेट से रिलेटेड थोड़ा सा गाइड करेगा और आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग करेगा। सो इसके लिए जो मेरे पास कोट है, सो बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। सो हमारा ये कोट ये कहता है कि जब आप किसी चीज़ पर यकीन कर लेते हैं कि अच्छा यू ट्राई टू डू दिस या इट्स इजी फॉर यू, आप कर लोगे या आप कर सकते हो या आपके लिए ये मुश्किल या नामुमकिन नहीं, तब आप उस सफ़र के गिर्द पहुंच जाते हो जहां आप उस काम को तकरीबन आधा कर लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ही इंसान की माइंड गेम्स होती हैं, माइंड की होती है। माइंड अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो इट मींस के इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि अब ये काम अपने इख्तिताम को कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा। द फर्स्ट थिंग होती है कि हमें अपने माइंड को सेटिस्फाई करना होता है कि किस तरह से हमारा माइंड एक नया काम शुरू करेगा और उस काम को आगे बढ़ाएगा। सो वेल, आई थिंक ये हर किसी के लिए मुश्किल भी होता है और हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो ये डिपेंड करता है कि आपका सेल्फ बिलीव किस कदर स्ट्रांग है। सो इसीलिए मैं हमेशा अपनी डिवाइस से कहती हूँ कि बी अ गर्ल जिसका सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग हो, यानी कि बी अ गर्ल जो कि खुद पर यकीन रखती हो कि वो पहाड़ों को छू लेगी और हर तरह का मुश्किल काम कर लेगी। सो वेल लिसनर्स, ये थे हमारे आज के 3 अच्छे से मोटिवेशनल से इंस्पिरेशनल से कोट। और जैसा कि है आपको मालूम कि कोशिश तो यही रहती है कि आपके लिए अच्छे अच्छे से कोट्स लेकर आए जाएँ ताकि आप मोटिवेट हों, अपनी अमली ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल करें और फिर अपनी कीमती आरा का इजहार हमसे करें। सो एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ, 0115710091 ये है मेरा और आपका रابطے का नंबर। सो इस नंबर के ज़रिए से आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह की अगर आपको रेसिपी चाहिए, किसी भी तरह का ट्रैक सुनना है या कुछ भी, एनीथिंग। All you have to do is you just tell me. So इसी के साथ ही अभी शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो माई लवली डिवाइस एंड सभी डेयर लिसनर्स, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें और वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 011-599-8484 या 077-021-079-32।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715200।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट और आप सभी की दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप टीवा डायलॉग। और जो टीवा डायलॉग का ये सफ़र हमने अब से एक घंटा या दो घंटे पहले शुरू किया था, वो अब अपने इख्तितामी मराहल के पहुंच चुका है करीब, यानी कि अब से लेके कुछ ही लम्हात रह गए हैं मेरे और आपके साथ साथ। लेकिन कोशिश तो यही है कि हम इन लम्हात को भी बना देंगे इतना ही खूबसूरत, इतना ही यादगार कि जब आप दीवा डायलॉग ख़त्म हो जाएगा तो भी आप दिन के बाकी घंटों में इसे सुनेंगे और याद करेंगे। सो, अभी वक्त आ चुका है दीवा डायलॉग के उस सेगमेंट को स्टार्ट करने का जो कि है मेरा और आपका, बल्कि हम सभी का फेवरेट, बिकॉज उन तमाम तर लोगों को ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है जिनको है पसंद कुकिंग और उनका दिल करता है कि कुछ नया नया ट्राई करते रहें। सो, आपके लिए है ये सेगमेंट। तो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी। सो, ये रेसिपी है बहुत मज़ेदार, चटपटी, और द बेस्ट थिंग इस बनने में भी है बहुत आसान। सो, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शेयर करते हैं आपके साथ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो, आपने पूरे ध्यान से गौर से सुन लेना है ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए, लेकिन अगर फिर भी हो गया कुछ भी मिस तो डोंट वरी, कोई घबराने की बात नहीं है। सिंपली आप 01157100971 इस नंबर पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगी। सो, आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन स्ट्रीट स्टाइल कबाब, क्योंकि आपने तमाम तर एशियन कबाब्स तो काफ़ी ट्राई किए होंगे, लेकिन जहां बात की जाती है स्ट्रीट फूड की तो फिर स्ट्रीट फूड का तो जवाब ही कुछ अलग है, क्योंकि स्ट्रीट फूड के स्पाइसेस अलग होते हैं, टेस्ट अलग होता है, लेकिन होता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। सो, इस रेसिपी के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं वो सब आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक अदद अच्छा सा ट्रैक सुन लेते हैं, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा और फिर हम किचन की जाने बढ़ेंगे।

डियर लिसनर्स, आई थिंक सो आप सभी ने अभी तक अपनी नोटबुक, कॉपी या फिर डायरी क्या तैयार कर ली होगी. सो मैं आपसे शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स. सो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 800 ग्राम्स बोनलेस चिकन. आप कोई सभी चिकन यूज़ कर सकते हो. अगर आप थाइस यूज़ कर रहे हो तो इट्स प्रिटी मच बेटर. साथ ही साथ आपको चाहिए 1 मीडियम रेड अनियंस, जिन्हें आपने अच्छी तरह से कट करके धो के ड्राई करके रख लेना है. सो, हमारा अगला इंग्रेडिएंट है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसे आपने अच्छी तरह से पेस्ट बनाकर रख लेना है. आगे अगर हम शामिल करें तो इस रेसिपी में ऐड होगा 2 से 3 ग्रीन चिलीज, जिन्हें अच्छे से आपने कट कर लेना है. 1/4 कप ब्रेड क्रम्स, अच्छी तरह से इसे भी रख लेना है. 2 टेबलस्पून क्लैरिफाइड बटर, घी, बटर या फिर ऑलिव ऑयल, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स टोटली योर चॉइस, इट्स टोटली योर टेस्ट बड्स. और उसके बाद हमें चाहिए 1.5 कप फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, 1/4 कप फ्रेश मिंट लीव्स, जिन्हें अच्छे से चॉप कर लेना है. 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स, 1.5 टेबलस्पून रोस्टेड एंड क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स. फिर शामिल होगा रेसिपी में 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1 पीस चारकोल, जो कि एक स्मोकी फ्लेवर और स्मोकी इफेक्ट ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे. सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि हम आज की इस रेसिपी में शामिल करेंगे. सो, ये तो मैंने आपसे शेयर कर दिए और आप सभी ने नोट भी कर लिए होंगे. लेकिन अगर डिवाइस आपसे हो गया है कुछ मिस, या फिर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं समझ आया, सो सिंपली आप 01157100971 इस नंबर पर जाके हमसे पूछ सकते हैं. आपकी तमाम तर क्यूरीज को भरपूर तरीके से दूर किया जाएगा. सो, अब हम चलते हैं इसके प्रोसीजर की जानिब कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे. सो, इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही ईजी है, जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ.

सो सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 1, जिसमें हम कीमा तैयार करेंगे, क्योंकि कबाब हमेशा कीमा के बनते हैं. सो चिकन हम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कीमा यूज़ कर लें. साथ ही साथ वो जो प्याज हमने जैसे धो कर रखा था, हरा धनिया, पुदीना, इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को आपस में कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड. इस मिक्सचर को बिल्कुल स्मूथ और बारीक सा पीस लेंगे, ताकि बिल्कुल भी हार्श पार्टिकल्स ना हो, और जब हम कबाब बनाएं तो वो आराम से स्मूथली जुड़ जाएं, बिल्कुल भी ना टूटें.

स्टेप नंबर टू में हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सो अब हमें इसमें नमक, गरम मसाला, कुटा हुआ जीरा, हरा धनिया, इन तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्रेड क्रम्स और पिघला हुआ घी, इन्हें भी शामिल कर देंगे।

तो तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद हाथ से अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लें ताकि आपका जो मिक्सचर है, जो बैटर है, वो बहुत अच्छी तरह से बन जाए, तमाम तरह स्पाइसेस इक्वली मिक्सिंग अप हो जाएं। यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। तो अब हमने क्या करना है, इस मिक्सचर को ढककर 30 से 40 मिनट के लिए रख देना है। इससे ये होगा कि मसाला आपस में बैलेंस हो जाएगा और टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा, और इससे जब हम कबाब बनेंगे तो वो बहुत अच्छे से बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे।

अब आपने ये करना है कि स्टेप नंबर 4 पर चलना है. अच्छी तरह से सबसे पहले तो हाथ वॉश कर लें, ठीक है. थोड़ा सा तेल या फिर ऑयल लगा लें, ठीक है, और उस चिकन के मिक्सचर को उठा लें. इसे सीक या फिर वुडन की किसी भी स्टिक पर आराम से लंबाई में शेप की तरह लगाते जाएं, ठीक है. इस तरह से वन बाय वन आप तमाम तर कबाब रेडी करके उन स्टिक्स को या फिर लोहे की सीखों को रख दें. फिर आता है हमारा फाइनल और लास्ट स्टेप,

सो स्टेप नंबर 5 यानी कि हम फाइनल स्टेप में अच्छी तरह से हम कोई भी पैन ले सकते हैं, ग्रिल पैन ले सकते हैं, इसे थोड़ा सा तेल से गर्म कर लें। कबाब को मीडियम आंच पर हर तरफ से 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएं। इतना पकाएं कि उनका रंग गोल्डन ब्राउन हो जाए। याद रखिएगा कि आपने कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं करना, क्योंकि इस तरह से कबाब बहुत ज़्यादा ड्राई बनते हैं और जूसीनेस कम हो जाती है। सो यहाँ तक अब हमारे कबाब हो गए तैयार। अब हम ज़रा देंगे इसको एक फाइनल टच। सो कबाब को दरमियान में छोटी कटोरी या फिर एलुमिनियम फॉइल रख लें, ठीक है। उसके ऊपर जलता हुआ कोयला रख दें और ऊपर से एक चम्मच घी डाल दें और इस बर्तन को 2 मिनट के लिए बंद कर दें। सो 5-10 मिनट के बाद स्मोक की वजह से आपके जो कबाब हैं इनका टेस्ट, इनका अरोमा बिल्कुल इस तरह से होगा जिस तरह से आप किसी भी 5-स्टार होटल या रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं। सो ये थी आपकी मज़ेदार सी स्ट्रीट फूड स्टाइल कबाब रेसिपी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। वेल लिसनर्स, कैसे लगी आपको ये रेसिपी और इस रेसिपी के हवाले से है आपका क्या कहना? आप हमसे शेयर कर सकते हैं सिंपली हमारे नंबर पर जाकर। सो ये थी आज की मज़ेदार सी द स्पाइस किचन की रेसिपी। उम्मीद तो यही आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाजमी आज ही इसे ट्राई कीजिएगा। मैं तो यही कहूँगी कि अभी लंच ब्रेक में आप इसे ट्राई कर सकते हैं या चाहें तो डिनर में भी ट्राई कर सकते हैं। वेल इट्स बेटर कि आप डिनर में ट्राई करें, क्योंकि डिनर में सब घर वाले घर पर ही मौजूद होते हैं। सो अच्छा लगता है कि जब हम कोई भी न्यू चीज़ ट्राई करें और सब घर वाले साथ हों और साथ में मिल बैठ कर खाएँ। सो लाजमी ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वेल लिसनर्स, इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज के लिए आप हमें बता सकते हैं और आप हमारे वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो तमाम तरह जरिया है जिनसे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इसी तरह से कम्युनिकेशन करते रहा करें और बताते रहा करें। वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही डिवा डायलॉग का ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचा और शो का वक्त ख़त्म हो चुका है, बट आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो कोशिश यही करिएगा कि आप आज के दिन को खूबसूरत बनाएं, मैंने कूल बनाएं और जितने भी हमने ये जो मोटिवेशनल बातें की हैं इन पर ज़रूर अमल कीजिएगा, क्योंकि ये आपको अमली ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी और आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनेंगी। साथ ही साथ जैसे कि शो का वक्त ख़त्म हो चुका है तो एक बार फिर से रिपीट करती चलती हूँ, 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर यानी कि मेरा और आपका रابطे का नंबर। सो इस नंबर के थ्रू आप मुझसे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे अपना फीडबैक शेयर करते हैं, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए हर आने वाले दिन में कुछ नया, कुछ मुनफरिद, कुछ अलग लेकर आएँ। साथ ही साथ बताते चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जिसकी वजह से आप हमें ट्यून कर सकते हैं, हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन को बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इसी तरह से हमारे संग जुड़े रहें, बने रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी होस्ट आर्चे सनम फातिमा को दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ।

लिसनर्स, जाते जाते आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ट्रैक प्ले करते चलती हूँ। सो आप इस ट्रैक को सुनते सुनते अपनी जिंदगी में मगन हो जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठी है। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H।

0: It's commercial time.
1: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइक कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट नॉटिंघम एंड 7680 ऑन संडे 2nd August 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM। मजीद मालूमात के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pakistanforum.co.uk। टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज कॉल 07802988615। Only a limited number of slots available.
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Hits.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.

बातों के साथ साथ ही आप अपनी पसंद का जो है वो म्यूजिक भी मुझे बता सकते हैं, और आज हम लेटेस्ट और अपडेट जो है वो सॉन्ग सुनेंगे, और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो म्यूजिक है वो किस तरह से वक्त के साथ साथ चेंज हुआ और इसके अंदर लेटेस्ट क्या क्या चीज़ें आईं, और कौन कौन से ऐसे सिंगर हैं जी जो पहले बिल्कुल जिनका नामो निशान नहीं था लेकिन आज वो हमें नज़र आते हैं और आज कल हमारे वो स्टार्स हैं, और जो हमारे पुराने स्टार हैं उन्होंने अपने आप को किस तरह से बदला, और जो नया म्यूजिक है और पुराने म्यूजिक को कंबाइन करके जो लोगों ने म्यूजिक बनाया जी उसका क्या ही कहना है, वो सारा कुछ आज हम मिक्स करके प्ले करेंगे। शॉर्ट टाइम है लेकिन कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों को हम जो है वो लेकर चलें साथ साथ, लेकिन आप लोगों की बातें जो है वो भी हम शामिल करेंगे, जो आप लोगों के व्यूज़ होंगे वो भी शामिल करेंगे, उसके साथ साथ म्यूज़िक भी। और अभी हम जो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट मेरे ख्याल से हमने जो करना है वो हमसे करेंगे।

वेल जी, अभी आप सुन रहे थे रेडियो फजा 97.1 FM पर इब्रारुल हक का म्यूज़िक। ये जो नाम था इसका हम था, और ये बहुत ही खूबसूरत कलाम भी है। इसके जो लिरिक्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त और जानदार हैं कि गौर पया कोई होर, ठीक है, ये इंसान को याद करवाता है कि ये दुनिया आर्जी है और इसके अंदर हम लोग सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए हैं। तो जो भी है, दिल के अंदर गुनुदगी नहीं रखनी चाहिए, दिल के अंदर कोई भी मुनाफ़त नहीं रखनी चाहिए, जो बातें हों आपके क्लियर होनी चाहिए, और जो भी टाइम आपको मिले उसको इंजॉय करना चाहिए, ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते जो है वो गुजारना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने एक दिन चले ही जाना है, बेशक वो आप हैं या मैं हूँ या कोई भी है। तो इसलिए जो भी आपको टाइम मिले, जिस चीज़ के लिए भी आप जो है वो काम करते हैं, दिल लगा के काम करें, और जो भी टाइम मिले उसको एंजॉय करें, बजाय इसके कि आप अगले या पिछले दिन गल्ला करो, फजूल गल्ला करो, उनका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जी आपने एंजॉय करना है। तो आगे मैं एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो गाना शामिल करने जा रहा हूँ, पंजाबी है, सॉन्ग थोड़ा पुराना है लेकिन यकीन करें कि वो इतना कमाल का सॉन्ग है कि मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसको अपना BGM बनाऊंगा। आप सुनेंगे तो एक दफ़ा आप भी झूम उठेंगे, अगर आप ना झूमें तो मुझे बताइएगा, मैं उसको चेंज कर दूंगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपका और मेरा दोबारा से साथ शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये साथ पसंद आया होगा। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM। अगर आप लोग मुझे जानते हैं, शायद आप लोगों ने मुझे पहले सुना हो, क्योंकि पहले मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद था। बीच में एक छोटा सा गैप आया था, मुझे अनफॉर्चुनेटली ट्रैवल करना पड़ा और बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली ही ट्रैवल करना पड़ता है। तो बस उस ट्रैवल की वजह से मेरा और थोड़ा सा रेडियो का साथ जो वो थोड़ा छूट गया, लेकिन मैंने बहुत ही याद किया आप लोगों को। कि आप लोगों ने मुझे याद किया, अगर सच बताना है आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने मुझे याद किया तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आपने करना कुछ यूं है कि जी मोबाइल फ़ोन उठा लेना है और डायल करना है 01157100971। व्हाट्सएप पे आपने विदाउट एनी कॉस्ट मैसेज कर देना है, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपने मुझे याद किया। इसके अलावा जी आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको शो कैसा लग रहा है, या फिर आप ये भी जो है फरमाइश कर सकते हैं कि आपने क्या सुनना है, कौन सा गाना सुनना है, कौन सा आर्टिस्ट आपको पसंद है और क्यों पसंद है, ये भी आप बता सकते हैं। अपनी सारी थॉट जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आज का जो हमारा एक टॉपिक है, छोटा सा हमने एक टॉपिक भी आज रखा हुआ है म्यूज़िक के साथ साथ, क्योंकि कुछ जो है ना वो रीज़न भी होना चाहिए आपके पास कि आप जो आपके अपने दोस्तों के साथ यानी कि अपने लिसनर्स के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ भी होनी चाहिए ताकि आपकी ये जो यादें हैं ये एक दूसरे से वाबस्ता रहें। क्योंकि म्यूज़िक सुनने के बाद तो फिर बंदा भूल ही जाता है भाई। अगर ऐसा नहीं तो ये भी आप बता ही सकते हैं मुझे। बहरहाल जी, टाइम वेस्ट किए बगैर आपसे मैं ये पूछूंगा कि अगर आप लोगों को एक मौका मिले कोई भी डिसीजन जो है वो दोबारा लेने का, तो ऐसा कौन सा डिसीजन होगा कि आप वो चाहेंगे कि आपको वो चेंज होना चाहिए और उसको आप दोबारा लेना चाहेंगे ज़िंदगी के अंदर। ऐसे बहुत सारे जो हैं वो रीजंस हो सकते हैं कि इंसान जो आता है कि यार मैं ये काश ये ना किया होता, काश ये ना किया होता। ये जो काश आता है ना, इसके अंदर ही हमारा टॉपिक भी घूम रहा है। जैसे ही मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया, यकीन कीजिए कि मेरे दिमाग के अंदर एक पुरानी रील जो है वो मेरी ज़िंदगी की वो चलना बल्कि क्या दौड़ना शुरू होगी, जैसे मोटरवे के ऊपर मेरी गाड़ी। और बिल्कुल उसी तरह से यादें जो हैं वो मेरे आंखों के आगे ऐसे आ रही हैं जैसे एक पूरी रील बन के जो है वो घूम रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से मैं कौन सा ऐसा जो है वो डिसीजन था मेरा, गलत था, जो मैं चाहूँगा कि वो चेंज हो जाए अगर मेरे पास मौका हो तो।

वैसे तो जो लड़के हैं, जवान लड़के जो हैं, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीन अपने चेंज करना चाहेंगे, जैसे कैरियर को लेके कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें रिलेशन को लेकर होती हैं, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि बंदा चाहता है काश मैंने वो डिसीजन ना लिया होता और आज मैं ज़िंदगी के किसी और मकाम पे, किसी और जगह पे या किसी और मोड़ के ऊपर खड़ा होता। बहरहाल जी, ज्यादा जोर ना डाले जिन के ऊपर। आपने क्या करना है जी, आपने जस्ट मुझे बता देना है कि आपका कौन सा ऐसा डिसीजन था जो आपने लेना चाहा लेकिन वो ले नहीं सके, और क्यों नहीं ले सके आप मुझे बता सकते हैं। बताने के लिए अगेन मैं आपको अपना नंबर जो है वो बताता चलूँ, 0115-710-0971। ये मेरा नहीं बल्कि रेडियो का नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर हमें बता सकते हैं, और साथ साथ आप हमें शो के बारे में भी बता सकते हैं कि शो किस तरह का चल रहा है। तो उस सारी चीज़ों के साथ, आप करण ओजला का ये एक गाना है जो कि आपको याद करवाता है कि आपने परेशान नहीं होना, उसका नाम भी डोंट वरी है।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली, आप सुन रहे हैं रेडियो फॉर 97.1 FM, और टाइम हुआ चाहता है 2:40 का आपका और मेरा साथ रहने वाला है 6 बजे तक। और इस साथ के अंदर हमेशा की तरह आपकी और मेरी बहुत सारी बातें होती हैं, गाने होते हैं, और अभी आप सुन रहे थे करण ओजला को। नेक्स्ट जो है वो सॉन्ग, वो भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आप बताइए कि जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में आपने क्या सोचा और आपके क्या ख्यालात हैं।

मैं आज आते हुए सोच रहा था कि लोग कहते कुछ हैं, होता कुछ है, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, यार ये क्यों हो रहा है, आजकल हो रहा है या पहले भी ऐसे होता था? अगर मेरे सुनने वाले मुझसे कुछ सीनियर हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं कि ये पहले से ही चल रहा था या इसी जनरेशन को ये चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। कि मोस्टली ये होता है कि जी लोग कहते हैं कि जी हम आए 5 मिनट में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो इस तरह कहते हैं हम आए 5 मिनट में, और यकीन कीजिए कि समटाइम वो 5 मिनट जो है वो 50 मिनट तक चले जाते हैं, साथ वो भी लगा लेते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि भाई ये क्या चल रहा है। बहरहाल जी ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं और ये दुनियादारी भी है, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। तो लेकिन जब मैं ये चीज़ें फेस करता हूँ तो बड़ा दिल जो है ना वो बोझल सा होता है और दिल दुखी सा हो जाता है।

एक चीज तो मैं ये भी ऐड करूंगा कि जी अगर मुझे मौका मिले कुछ चेंज करने का पास्ट के अंदर जाके, तो मैं सबसे पहले जो है ना इन सारे लोगों को चेंज करूंगा। ये जो 5 मिनट कह के 45 मिनट 50 मिनट लगा देते हैं, ये चीज़ें चेंज करूंगा ताकि मैं कम अज़ कम जो है वो मेरी रेपुटेशन मार्केट के अंदर ख़राब ना हो। कि भाई जहाँ पर हमने एक टाइम दिया होता है, डेफिनेटली टाइम की पाबंदी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आप लोग भी कुछ भी काम करें तो जो आपकी कमिटमेंट हो, जो आपका एक वक्त जो है वो तय हो चुका हो, तो कोशिश किया करें उस चीज़ को लेकर चला करें ताकि इन फ्यूचर जो है लोग आपको एक एतमाद की नज़र से देखें, ना कि शक की निगाह से देखा करें। निगाह से देखने से याद आया, जो लोग मुझे गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा अपने सामने, ये ना अपनी बातों के अंदर मगन होके ड्राइविंग से अपना फोकस आउट कर दें। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने हमारा साथ तो देना है, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी मोबाइल को टच नहीं करना। आपकी बातें जो है वो मेरे दिल से दिल तक पहुँच जाएंगी।

ले जी, टॉपिक के साथ साथ जो कि हमारी बात हुई थी म्यूजिक की, तो मैं म्यूजिक शामिल करने जा रहा हूँ और उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक भी होगा और ब्रेक के उस पार आपकी और मेरी दोबारा से मुलाकात होगी। तो आप लोगों ने इस टाइम के दौरान जैसे ही आपको मौका मिले मोबाइल उठाने का, तो आप लोगों ने मोबाइल उठा लेना और आपने डायल करना है 01159 क्या है ना कि जी, काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से मैंने ज्वाइनिंग दी है, तो मोबाइल नंबर जो है वो मेरी ज़ुबान से लड़खड़ा गया, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनियादारी है और इतना सा तो जो है वो मौका मिलना चाहिए ना जी, इतनी सी तो मुझे छूट होनी चाहिए। बहरहाल ये म्यूज़िक है, आप इस म्यूज़िक को एंजॉय करें और इस म्यूज़िक के उस पार जो है एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक होगा और उसके बाद दोबारा से आपकी और मेरी मुलाकात होगी। ओनली ऑन रेडियो फजा 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: ओखाना कढ़ाई की खुशबू, गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा।
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा

0: 3063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
2: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
3: हिट म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, पोइट्री, न्यूज एंड हेल्थ।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो पर 97.1 FM। टाइम हो गया जी 3 PM, यानी कि 3 बज चुके हैं और एक घंटे का पता भी नहीं चला, एक घंटा कितनी स्पीड के साथ गुजर गया। और आज का हमारा टॉपिक भी था कि जी जो चीज़ें गुजर जाती हैं उनके ऊपर क्या पछताया जाता है, अगर हाँ तो आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर पछता रहे हैं, कौन सा ऐसा डिसीजन है, कौन सा ऐसा फैसला है। अगर तो आप उस डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं जो मेरे जहन के अंदर घूम रहा है तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अगर आप उस बंदे को जाके बोलेंगे कि भाई मुझसे सबसे बड़ी गलती यही हुई कि मैंने तेरा साथ पाया, चाहे आप मजाक में बोलें लेकिन आपकी जान सच मुझ में जाएगी, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। इस तरह का मजाक भी नहीं करना। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आपने करना कुछ यूँ है जी, आपने उनको यही कहना कि जी सबसे अच्छा डिसीजन मेरा यही था कि मैंने आपको हासिल कर लिया, ला हासिल को हासिल कर लिया, आप जो मुझे मिल गए, मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई। इस तरह की बातें करेंगे तो चले ज़िंदगी के जो कुछ पल हैं वो आपको सुकून के, शांति के, मोहब्बत के, प्यार के मिल जाएंगे। बाल जी, पुरानी बातें जब हम करते हैं तो कुछ पुराने सॉन्ग होते हैं जो कि आजकल बिल्कुल फ्रेश और नई नई वाइब देते हैं, वो भी हमारे जहन के अंदर आते हैं। और अगर हम पुराने गानों की बात करें तो उसमें हनी सिंह जो है, इतने भी पुराने नहीं लेकिन अब पुराने हो ही चुके हैं ये तो मानना पड़ेगा। मैं लास्ट हनी सिंह का एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि जी अब मुझे फील आती है, अब मुझे वाइब आती है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और ये वाइब उनको इसलिए आती है क्योंकि उनके सर के जो बाल हैं वो उड़ चुके हैं। तो अगर आपके सर के बाल भी उड़ चुके हैं तो आपको भी इस तरह की वाइब आती है कि नहीं आती, आप ये भी मुझे बता सकते हैं, लेकिन आपने गाली निकाले बगैर मुझे बताना है कि आपको इस तरह की वाइब आती है कि नहीं आती। वैसे यकीन कीजिए, अल्लाह जानता है कि सबसे बड़ा जो दुख है ना, और भी बड़े दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, मोहब्बत के सिवा सबसे बड़ा दुख, बल्कि मोहब्बत को मिला के भी सबसे बड़ा दुख यही है कि आपके बाल जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएं। अगर आप अरब वाली साइड पे जाएं ना, वहाँ पे पानी का डिफरेंस होता है, पानी का जो है ना वो टेस्ट भी चेंज होता है। और पानी चेंज होने की वजह से, मैंने सुना कि जी पानी की वजह से ही जो है वो लोगों के बाल वहाँ पे ज़्यादा जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। लास्ट मेरा भी विज़िट हुआ दुबई का, और दुबई जाने के बाद मुझे ये अच्छा खासा एहसास भी हुआ, फील आई कि भाई यहाँ पे वाकई जो मैंने सुना था, या तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, ये हकीकत है। आपके साथ भी कभी इस तरह हुआ है कि नहीं, या ये सिर्फ जीन्स का मसला होता है कि भाई, कहते हैं जेनेटिक भी इशूज़ होते हैं कि इंसान के जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। परल जी, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमने हनी सिंह का जो है वो एक गाना आपके लिए निकाला हुआ है मेरी आंखों के सामने, ब्लू आइज, और ये नीली आंखें जो हैं वो देखते भी हैं, बल्कि सिर्फ देखूंगा मैं ही, सुनते ही हैं। तो इस तरह करते हैं कि जी गाना सुनते और गाने के उस पार आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे, और मुझे आपने बताना भी है टॉपिक के हवाले से कि टॉपिक जो है वो आपको किस तरह का लग रहा है और आपने क्या सोचा है फिर के कौन सा ऐसा डिसीजन है जी जो आप चेंज करना चाहेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी राय मेरे लिए बड़ी कीमती है और बताने के लिए आपने 01157100971 पर रब्ता करना है।

वेलकम बैक वंस अगेन जी। हनी सिंह के ब्लू आइज़ के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहा जाता है और शो जो है वो चल रहा है हमारा। 3:08 हो चुके हैं और हमारा और आपका साथ रहने वाला है 4:00।

आज का हमारा टॉपिक जो है वो जी बड़ा मज़ेदार है कि आपने ऐसा कौन सा डिसीजन है जो गलत लिया और आप चाहेंगे कि उसको चेंज कर दिया जाए उस डिसीजन को। वैसे इस तरह पॉसिबल अगर होता तो मेरे जहन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं, बहुत सारे अजीब और गरीब डिसीजन मैंने यकीन कीजिए लिए हुए हैं, जो कि ना चाह कर भी वो मैंने ले तो लिए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो चेंज हो जाए। क्या कोई ऐसा फार्मूला जो है वो है जो मेरे वो डिसीजन को चेंज कर दे? ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि जी मैं डिसीजन मेकर हूँ, डिसीजन ले लेता हूँ। यस, आफ्टर डिसीजन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ चीज़ें फेस करना पड़ती हैं कि कुछ उस डिसीजन के पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। और फिर ये तो डिसीजन लेने के बाद इंसान को आइडिया होता है कि भाई ये जो मैंने डिसीजन ले लिया इसके पॉजिटिव जो है इफेक्ट्स हैं या नेगेटिव हैं, और ये जो है हमें किस तरफ लेकर जा रहा है, हमने जाना कहाँ पर था।

तो बाद में कर रहा था कि जाना कहाँ है और ले कहाँ जाता है गलत डिसीजन एक इंसान का, गलत फैसला। तो वैसे इस तरह कभी हुआ कि आपने कभी मेन रोड के ऊपर गलत यू टर्न ले लिया और आपको पता चल गया हो कि आपने जो ये यू टर्न ले लिया अभी आपको बहुत दूर लेकर जाने वाला है? यकीन कीजिए, मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ। ये वाक़या तो है पाकिस्तान का कि हमने मोटरवे के ऊपर जो है वो एक गलत यू टर्न ले लिया और उस यू टर्न के बाद आगे आप बिलीव करेंगे कि मैंने जाना था गुजरांवाला से लाहौर। लाहौर जाते हुए हमने एक गलत यू टर्न ले लिया जो कि लेना नहीं चाहिए था। वो लेने के बाद हमने जब आगे जाके देखा कि भैया अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, स्टिल ड्राइविंग ड्राइविंग करते करते करते करते मैं थक गया था, रोड नहीं थी थकी। और हम जब टर्न लिया हमने एट द एंड जाके देखा कि भाई गूगल मैप चेक किया कि कहाँ पर पहुँच गए हैं, तो हम इस्लामाबाद में पहुँच गए थे। देखिए ना कि गलत फैसला जो होता है, गलत डिसीजन जो होता है, गलत यू टर्न जो होता है वो आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले हैं मेरी आंखों के सामने, अब वो रील चल रही है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि भाई जैसे ही मैंने ये आज का टॉपिक डिसाइड किया, जैसे ही इस टॉपिक को मैंने चूज़ किया और इस टॉपिक को चूज़ करने के बाद जिस तरह ही इसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, तो उसके बाद पहले तो मेरी अपनी जो डिसीजन थे, मेरे गलत डिसीजन थे, वो मेरी आंखों के सामने आए। फिर उनमें से मैंने ये सिलेक्शन की कि कौन से इस तरह के डिसीजन होंगे जो मैं चाहूँगा कि भाई इनको चेंज कर दिया जाए। तो वो मतलब एक दो इस तरह के बहुत बड़े बड़े फैसले हैं जो मैं चाहूँगा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनको चेंज कर दूँ। लेकिन ये तो मैं आखिर में बताऊंगा कि भाई मैं कौन कौन से डिसीजन चेंज करना चाहता हूँ। आप मुझे पहले बताइए, पहले आप बताएंगे, फिर उसके बाद मैं अपनी बातें शेयर करूँगा ताकि मैं देखूं भी भाई मेरे आपकी सोच जो है वो कितनी मिलती जुलती है या ज़मीन आसमान का फ़र्क है।

तो जैसे ही आपको याद आए कि जी आपने वो कौन सा डिसीजन है वो चेंज करना है, तो साथ ही आपने मुझे इशारा कर देना, और इशारे से याद आया गुरु रंधावा, और गुरु रंधावे से याद आया उसका एक सॉन्ग इशारे तेरे। अगर आपको गाना याद है तो मुझे बताइए कि उसके लास्ट में जो लिरिक्स हैं वो क्या हैं। अगर आप मुझे सच बताएंगे तो आपको एक मैं गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट ही बल्कि आपका एक हम फैसला जो है वो हमारे लिए काबिले कबूल होगा, या आपकी एक फरमाइश जो है वो हम पूरी कर देंगे, और अगर आपने वो ठीक बता दिया। लेकिन स्टार के जो लिरिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ, बल्कि आपको सुना ही देता हूँ।

0: तो अभी आप सुन रहे हैं इशारे तेरे, इस गुरु रंधावा का सॉन्ग है। इस गाने के उस पार दोबारा से आपसे मुलाकात होगी।
1: इशारे तेरे कंगड़े दे, चढ़ी के दिल मंगड़े दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया।
0: तो इस गाने के उस पार दोबारा से फैन बनते हैं।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम। आपको क्या कहते हैं आप मुझे बता सकते हैं रेडियो फजा को ट्यून करके। और अगर आपने ऑलरेडी ट्यून किया हुआ है तो आपने करना कुछ ही है, 01157100971 डायल करना है, क्योंकि आपका और मेरा साथ रहने वाला है जी ठीक 4 बजे तक, और जस्ट 45 मिनट्स, बल्कि 44 मिनट्स, एक मिनट का भी हिसाब रख लिया भाई मैंने, जस्ट 44 मिनट्स जो है वो रह चुके हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आपने जल्दी से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लेना, इन टच हो जाना है, ताकि हम ढेर सारी बातें करें और आपकी जो बातें हैं उनको भी प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लें, नहीं तो आप नाराज़ हो जाएंगे। तो आपको नाराज़ बिल्कुल भी नहीं करना,

जैसे वो कहते हैं ना कि भूखे से पूछें कि जी भाई एक और एक कितने होते हैं, वो कहता है कि दो रोटियां। इसी तरह कहते हैं कि जी जब आप किसी भी चीज़ का तذکرہ करें तो जो आशिक होता है उसको सिर्फ अपने महबूब की फिक्र होती है, महबूब की याद आती है, महबूब ही उसके जहन में आता है। तो जैसे ही मैंने पास्ट की बात की तो हुआ कुछ यूं कि जी मेरा एक दोस्त है, उसको अपनी पुरानी मोहब्बतें जो है वो याद आ गई। वो कह रहा है मोहब्बतें नहीं भाई मोहब्बत, अच्छा जी चले मान लेते हैं कि मोहब्बत याद आ गई, और उसने अपनी पुरानी जो मोहब्बत है उसका जिक्र छेड़ दिया और मुझे मैसेज किया। कहता कि जिंदगी का अगर पास्ट में जाके मौका मिले कुछ चेंज करने का तो वो एक डिसीजन चेंज करेंगे, जहां पर उन्होंने इजाजत दी थी अपने महबूब को कि जा सिमरन जा चली जा जी ले अपनी जिंदगी। तो जी अलियान का कहना है कि वो ये बिल्कुल भी डिसीजन जो लिया उन्होंने उसका पछतावा उनको पूरी जिंदगी रहेगा, और अभी भी जैसे ही आज का टॉपिक हमने अनाउंस किया तो उनको सबसे पहले अपनी सिमरन की याद आई। सिमरन एक आरजी नाम है भाई, वो शाहरुख खान वाली सिमरन, लेकिन अलियान की जो सिमरन थी वो कोई और थी। अलियान ने तो उनको नाराज कर दिया। अलियान साहब आपको हम यही कहेंगे कि भाई जाके अपनी सिमरन को राजी करें और इश्क जो है वो उसको जिंदा कर लें अपने को दोबारा से, अगर ये पॉसिबल है तो। आपका जो अलियान मैसेज है वो हम तक पहुंच चुका है, थैंक यू वेरी मच। और आपके लिए हम ये एक सॉन्ग, एक म्यूजिक इब्रार उल हक की आवाज़ में इश्क की बूटी लगाने जा रहे हैं। होप सो आपको ये पसंद आएगा और सुनने वाले और भी दोस्त जो हैं इस म्यूजिक को एंजॉय करेंगे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 011-599-8484 या 07-021-079-32।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम से लाइव। मुझे आपका और मेरा साथ रहने वाला है जी ठीक 4 बजे तक, और 4 बजने में 30 मिनट्स रह गए हैं। टाइम बड़ी स्पीड के साथ गुजरता चला जा रहा है, चाहे वो इस शो का हो या चाहे हमारी हकीकी जिंदगी का। और गुजरते वक्त के साथ साथ हमें याद आता है कि जी जो वक्त गुजर गया वही अच्छा था, और उसके अंदर हमने जो फैसले ले लिए वो बुरे थे या अच्छे थे, ये तो आप लोग बताएंगे ना मुझे, क्योंकि हर शख्स की कहानी अलग होती है और हर शख्स की जो है वो स्टोरी भी अलग होती है, हर शख्स के फैसले भी अलग होते हैं और हर शख्स का अपना अपना अंदाज होता है ज़िंदगी गुजारने का। लेकिन जी आपने कोशिश ये करनी है कि ज़िंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं, ज़िंदगी को जीना भी है, ताकि ज़िंदगी को जीते जीते आप लोग ज़िंदा भी रहें। कहते हैं ना कुछ लोग जो हैं वो ज़िंदा होते हैं लेकिन उनके अंदर ज़िंदगी नहीं होती। ये क्या कह दिया मैंने। बहरहाल जी, अलियान का मुझे मैसेज आया दोबारा से, उसने मुझे पोएट्री सेंड की है और वो हम उसकी जो 4 लाइनें हैं उसको भी शो के अंदर शामिल करेंगे। शायद वो गुस्सा कर गया मेरी बात का, जो हमने कह दिया कि भाई मोहब्बत को आज़ाद करने के बाद अब उसको छोड़ दो, क्योंकि जो परिंदे, मेरे बड़े कहते हैं कि जो परिंदे उड़ जाते हैं फिर उनको वापस नहीं बुलाते। नहीं जी, अलियान ने कहा है कि जी आज भी उसकी आंखों में राज वही था, चेहरा वही था, चेहरे का लिबास वही था, कैसे उसको बेवफा कह दूं यार, आज भी उसका देखने का अंदाज वही था। अरे वाह, क्या कहने हैं अलियान जी आपके। बहरहाल जी, आपका दिल तो टूट गया ना, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई रुलाता है कोई हंसाता है, दिल में रहने वाला आखिर दिल तोड़ ही जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना उनके जीना। कहते हैं कि जी बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना उनके जीना जब कोई अपना बना के छोड़ जाता है। यार ये हम किस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ नहीं जाना अलियान जी, किधर लेके जा रहे हो हमें, हमने उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना, हमने यहाँ पर ही रहना है और आप लोगों की पुरानी बातें जो है उनको हमने शामिल करना है, आप लोगों की स्टोरीज, आप लोगों के वो डिसीजंस जो आप लोग ले चुके हैं और उनको। वैसे मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ ना, लास्ट चल रहा है प्रोग्राम का और हमारे पास कुछ ही पल हैं एक दूसरे का साथ देने के, तो जाते जाते मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत नसीहत करता जाता हूँ। वैसे नसीहत जो है मेरी अभी उम्र तो नहीं नसीहत करने की, लेकिन फिर भी शायद बहुत सारे लोग मुझसे बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, मेरे सीनियर होंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जी हजरत अली का कौल है कि आपको जो अच्छी बात जहाँ से मिले भाई वो ले लो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कहीं से भी उसका ताल्लुक हो, किसी ज़ात से हो किसी फ़िरके से हो, आपने अच्छी बात पिक कर लेनी है। तो आपको मैं अच्छा लगूँ बुरा लगूँ लेकिन मेरी जो अच्छी बात है वो आप लोगों ने पिक कर लेनी है, वो ले लेनी है, अपने पास रख लेनी है, संभाल के रखनी है भाई। वो बात ये है कि जी आपने जो भी डिसीजन ले लिए, जो भी अच्छा बुरा आपने फैसला कर लिया, आप अब उसके ऊपर डट जाएं, उस डिसीजन को लेकर चलें, उसी चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करें, उस चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई बिजनेस हो, या चाहे आपने ज़िंदगी की गाड़ी को किसी ऐसे जो है वो रोड के ऊपर चढ़ा लिया जिसकी मंजिल तो वही है लेकिन रोड थोड़ी सी टूटी हुई है, तो थोड़ा स्लो कर लें गाड़ी को और आराम से धीमे से प्यार से चलें। यकीन कीजिए कि आपको सफ़र का मज़ा भी आएगा और आपकी मंजिल भी आपको मिल जाएगी। इन अच्छी अच्छी बातों में गंदा सा गाना बादशाह का, गंदा गाना तो नहीं है, पानी पानी है। आए जी चले, पानी पानी होते हैं मोहब्बत के अंदर। और इस गाने को जो है हम शामिल करते हैं बादशाह का, ये सॉन्ग है पानी पानी।

0: आपको पता है जैकलिन कहाँ जाके पानी पानी हुई है, ये सहरा के अंदर जाके पानी पानी हो गई है भाई।
1: चलेगी क्या क्लास?
0: आ गया जी बैड बॉय बादशाह
1: साथ थाईलैंड।
0: चलें इस गाने को एंजॉय करें, गाने के उस पार दोबारा से मुलाकात करते हैं, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM।
1: आगे भी बढ़ेगी क्या नौ एक कदम में फारम फारम पे घोड़े घोड़े पे चढ़ेगी क्या। 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरे लिख ले कहीं चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

बाल जी, आज हम बात कर रहे थे पुराने कुछ डिसीजंस को लेके, तो मेरे जहन में एक दो चीज़ें आई जो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप हो सकता है मेरी उसमें रहनुमाई करें, मेरा साथ दें, मुझे गाइड करें, कह देना मशवरा ले लेना चाहिए। तो आपसे मुझे मशवरा एक चाहिए कि क्या किसी को जब आप ब्लॉक कर दें किसी बात को लेके, आपकी उनसे नाराज़गी हो जाए, आप ब्लॉक कर दें, क्या उसके बाद दोबारा से अनब्लॉक करना चाहिए या नहीं चाहिए। कहते हैं जदीद दौर के जदीद मसले। तो ये एक हमारा मसला है जो चल रहा है। कभी दिल के अंदर ख्याल आता है कि उसको अनब्लॉक करके मैसेज कर दिया जाए, कभी ख्याल आता है कि नहीं नहीं भाई, अपनी जो ईगो है उसको हर्ट ना किया जाए। वैसे किसी के साथ नाराज़गी होने के बाद उसको ब्लॉक कर देना, ये मैच्योरिटी है या फिर ईगो, ये भी समझ नहीं आती। बंदा जो है वो, अगर मैं खुद से अपना इस चीज़ को डिसीजन लूँ तो मुझे मैच्योरिटी नज़र आती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसी चीज़ को ईगो भी कहते हैं। बहरहाल जी, ये तो मेरा मसला हो गया, आपका मसला क्या है वो आप बता सकते हैं। मुझे बताने के लिए आपने करना कुछ यूँ है, लाइव कॉल कर सकते हैं 0115710091 के थ्रू। और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग हमारी सुनना चाहते हैं, वेबसाइट पे जाके हमारी आप सुन सकते हैं www.radiofaza.co.uk, इसके थ्रू आप हमें लाइव सुन सकते हैं, यानी कि मुझे, मेरे अलावा दूसरे भी हमारे आरजेज हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। एक और चीज़ है कि जी, क्या जो है वो, अगर आपको चूज़ करना पड़े एक अच्छे दोस्त में से किसी एक को, कि एक आपका बेस्ट फ्रेंड है और एक तरफ आपका जो है वो पार्टनर है, तो डेफिनेटली मैं तो पार्टनर को चूज़ करूँ। क्या आप बेस्ट फ्रेंड को चूज़ करें या पार्टनर को चूज़ करें? मुझे कहानी याद आ गई कि मेरा एक दोस्त था, वो नाराज़ हुआ मुझसे, तो सारे दोस्तों ने बोला उसको नाराज़ हो गया है, वो किसी बात को लेके उसके अंदर और हमारे अंदर नाराज़गी पैदा हो गई, तो सब ने बोला उसको राज़ी करने का। मैंने कहा कर लेंगे। वक्त गुजरता गया, नाराज़गी बढ़ती गई। बहरहाल क्या हुआ कि हमने उसको राज़ी किस तरह से किया। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को किस तरह राज़ी करते हैं ये भी आप बता सकते हैं। हमने किस तरह राज़ी किया, हमने उसको दावत दी कि भाई खाने की आ जाओ, खाना खाना है, तो वो भाई सब भागते हुए आ गए सारी नाराज़गियाँ ख़त्म करके। बहरहाल हमें ये समझ नहीं आई वो खाने के लिए आए या फिर वो नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए आए, आखिर चल क्या रहा था ये तो समझ नहीं आई। बहरहाल जब हमने खाना खा लिया, जो हमें समझ आया वो ये था कि हमने बिल जो है वो पे करने के लिए उसी भाई साहब को उठा दिया, हमने बोला कि भाई आप जाएं और बिल पे करें, और लिटरली उसके अल्फाज क्या थे, वो ये कहता है कि जी मैं नाराज ही रहता तो मैं ठीक था। ऐसा भी कभी कभार हो जाता है।

परल जी दोस्तों की बात हो और इमरान खान जो हैं उनका जिक्र ना हो। इमरान खान कौन से वाले? वो वाले जिनका मैं म्यूजिक प्ले करने जा रहा हूँ। मिलते हैं जी इमरान खान के इस सॉन्ग के उस पार, आपका और मेरा साथ ठीक ठीक ठीक 4 बजे तक रहने वाला है, तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने मेरा साथ देना है। मेरा साथ देने के लिए आपने करना कुछ यूँ है कि जी आपने डायल करना है जो हमारा नंबर, हमारा नंबर है 01157100971। अभी आप सुन रहे हैं एम्पलीफायर इमरान खान का।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो फॉर द 97.1 एफएम और मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली। आपका और मेरा साथ जो है वो कुछ ही लम्हों का रह गया है, इसके बाद हमें मजबूरन एक दूसरे को अलविदा कहना पड़ेगा। आप हमारा रेडियो ट्यून ही रखिएगा, क्योंकि मेरे बाद एक और आरजे हैं, हमारे सीनियर हैं, उनका भी शो है ड्राइव टाइम, आप उनका साथ भी दीजिएगा, क्योंकि उनके शो के अंदर बहुत सारा म्यूजिक जबरदस्त किस्म का और बहुत सारी चिट चैट, बहुत सारी अच्छी बातें, ये सारा कुछ जो है उनके एक शो के अंदर होता है, बिल्कुल एक शो के अंदर। बहरहाल जी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि आप लोगों को अगर मौका मिले पुरानी चीजों को चेंज करने का, पुराने डिसीजंस को चेंज करने का, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया, बहुत सारे लोग साथ देना चाह रहे थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के तहत मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। मजबूरियां ये हो सकती हैं कि आप ड्राइव कर रहे होंगे, और मैंने यकीनन मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों की सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ड्राइव करते हुए बिल्कुल भी मोबाइल को यूज ना कीजिए, मैंने ही रोका था आपको। चलो फिर से ही नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपका और मेरा साथ दोबारा से, जब तक रहेगा रेडियो पता 97.1 एफएम, मेरा और आपका साथ भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। जाते जाते मैं आपको एक खूबसूरत सा तोहफा, एक खूबसूरत सा सॉन्ग, एक खूबसूरत सा ट्रैक भी देते जाऊंगा। जो कि आपके और मेरे ऑल टाइम फेवरेट योयो पाजी का होगा। इनके साथ होंगे ऐप धिलन, बिल्कुल, और ये मैशअप है इन दोनों का, मिलके मिला के जो गाना बना वो आदत है इनको सुनना, आपकी और मेरी दोनों की, लेकिन गाने का नाम भी आदत है। और इसको सॉन्ग को हम प्ले करते चलेंगे, और जाते जाते हम ये आपको एक प्यारा सा गिफ्ट देते जा रहे हैं।

इस गाने के अंदर एक और चीज़ बड़ी अच्छी है, बड़ी मज़े की है, वो ये है कि जिस गाने के अंदर नूरा जो है वो भी अपना रोल प्ले कर रही हैं, आपको नूरा कैसी लगती हैं मुझे बताइएगा। मुझे भी वो अच्छी लगती हैं बिल्कुल आपकी तरह। चले जी, बगैर टाइम वेस्ट किए आपका और मेरा हम सब का अल्लाह निगेबान, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे दोबारा से रेडियो फ़ता 97.1 FM के चैनल के थ्रू, और आप लोगों से दोबारा से मुलाकात होगी। आप लोगों के मैसेजेस अगर रह गए हम नहीं पढ़ सके तो नेक्स्ट शो के अंदर मैं शामिल करूँगा। तब तक मेरा आपका हम सब का अल्लाह निगेबान।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.

ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। खूबसूरत सी आवाज़ आपने सुनी, आवाज़ के उस पार आपका मेज़बान उस्मान खान आपके साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी हैं मेरे साथ साथ। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप ड्राइव जोन, मुझे कहते हैं उस्मान खान और फजा नाइट 7.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से ये आवाज़ आपकी समातों से टकरा रही है। सियाने लोग कहा करते हैं कि ज़िंदगी के जिस मुकाम पर हवा से तस्लीम कर लो, और ये भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। देखिए, हम हर चीज़ हवा से सीखते हैं, क्योंकि हवा अपना रास्ता खुद बना लेती है, और हम ये चीज़ समझने में हमें आसानी रहती है हमेशा कि हमें किस रुख पर चलना है। सेम उसी तरह जिस तरह हवा को पता है कि उसने किस रुख पर चलना है, और वो अपने साथ साथ बाकी तमाम चीज़ें भी उसी साइड को ले जाती है, तो आपको भी अपनी ज़िंदगी का, कम से कम अपने रास्ते का ज़िंदगी में पता होना चाहिए कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, और आपने बाकी तमाम चीज़ें भी फिर उसी रास्ते पर लेकर चलनी होती है। हमारा मसला ये है कि हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ हो रहा होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस मोड़ पर लेकर जाना है, किस रास्ते से लेकर जाना है। बस अल्लाह तवक्कुल चलते ही जाते हैं, चलते जाते हैं, बस ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, जो किस्मत में लिखा है वो हो जाएगा। देखिए, ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो, कभी कभार आपका मुकद्दर, आपकी किस्मत आपका साथ ज़रूर देती है, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। हर चीज़ हम किस्मत पर नहीं छोड़ सकते, हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। कभी भी ये मुमकिन नहीं होता कि हम बिना मेहनत के बस इस उम्मीद पर बैठे रहें कि जो नसीब में होगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आपके नसीब में उस वक्त में ये लिखा हो कि आप मेहनत करेंगे तब आप कामयाब होंगे, और आप इस भरोसे पर बैठे रहें कि जो किस्मत में होगा देखी जाएगी, और मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से कामयाबी मिलेगी। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, रातों की नींदें उड़ानी पड़ती हैं, दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आप किसी मुकाम पर पहुँच पाते हैं। वो कहते हैं ना कि परिंदा जब उड़ान की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। जब आप मेहनत करने पर निकल पड़ते हैं और आप मेहनत करते हैं, तो कामयाबी आपका मुकद्दर जरूर बन जाती है। शर्त यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी बातें तो आपके साथ शेयर करें ही करें, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते चलें, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का पर्पस भी तो रखना है ना। वो जनाब, आप प्रोग्राम में शामिल होकर बता सकते हैं आज का दिन आपका किस तरह का गुजरा, जो गुजर चुका है वो कैसा गुजरा, और जो गुजरने वाला है उसमें क्या प्लानिंग कर रखी है आपने। जो दिन का वक्त गुजर चुका है उस दिन में क्या कुछ स्पेशल किया, क्या सुबह उठते कुछ सोचा कि आज स्पेशल करना है, या सारा दिन बस ऐसे ही गुजार दिया। खासतौर पे ये 9 to 5 जॉब करने वाले हजरात जो हैं एक रिबोटिक लाइफ जी रहे होते हैं, बस पता है कि सुबह उठना है, उठ के जॉब पर जाना है, जॉब से वापस आना है, बस ठीक है, यही एक रूटीन चलती जा रही है इनकी ज़िंदगी में। कुछ समथिंग स्पेशल ना, कुछ समथिंग डिफरेंट भी तो होना चाहिए। रोज रोज वही रिपोर्टिंग लाइफ जीते हैं। अगर इससे पहले आपने अपनी ज़िंदगी में कोई प्लान नहीं किया था कि सुबह उठ कर आपने पूरे दिन में क्या करना है, तो सुबह से इसकी रूटीन सेट कर लीजिएगा। सुबह बिस्तर से उठने से पहले आपने सोचना है कि आज आपने क्या क्या करना है, और वो क्या क्या जो करना है ना उसमें कुछ समथिंग स्पेशल भी होना चाहिए, ताकि रात को सोते हुए जब आप अपने पूरे दिन की रूटीन सोचें कि आज आपने क्या क्या किया है, तो आपको ये एहसास होना चाहिए, महसूस होना चाहिए, और अच्छा लगना चाहिए कि आज आपने बाकी दिनों के मुकाबले में कुछ डिफरेंट किया है। वेल, गपशप इसी तरह जारी सारी रहेगी। प्रोग्राम में ये खूबसूरत सी आवाज, आप सभी खूबसूरत सी समातों की नजर, इसके उस पार मिलेंगे फिर से, रहिएगा मेरे साथ साथ। हम ये होस्ट उस्मान खान।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

जी हाँ, वन सेकेंड वेलकम बैक आ चुके लौट के वापस से समित के साथ के हम आपके साथ साथ हैं, तो यकीनन आप भी हमारे साथ साथ हैं। आप सुन रहे हैं जनाब 97.1 FM नॉट एफएम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव जोन, और मुझे कहते हैं उस्मान खान। नए आने वाले तमाम तर मौजूद मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में, अपने प्रोग्राम में, और उम्मीद करेंगे आप लोग अब से लेकर ठीक प्रोग्राम के अहतमाम तक हमारे साथ साथ रहेंगे। जो आप अभी नए नए आए हैं, आपको बताते चलें कि प्रोग्राम आपने सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि प्रोग्राम में शामिल भी होना है, और अपने होने का एहसास मुझे दिलाना है। तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं। मोबाइल फ़ोन का डायल पैड ओपन कीजिएगा, नंबर बताता हूं, उस नंबर को नोट कर ले। द नंबर इज 0115 7100971, 0115 7100971। इस नंबर को नोट कीजिएगा, सेव कीजिएगा, और सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर जाइएगा। वहाँ पर कोई भी अपना पसंदीदा गज़ल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ, या चाहे तो किसी अपने प्यारे के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज सकते हैं। हवा के दुश्मन लहराता गुनगुनाता सनसनाता हो आपका खूबसूरत सा पैगाम, जैसे मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर चकमकाएगा, सुनती हुई तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। सो डोंट मिस द चांस, आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए हमारे प्रोग्राम में, और बताइए कि आज के दिन की क्या प्लानिंग रही, क्या आपने आज जो करने का सोचा था क्या वो किया, और अगर कर लिया तो कंग्रेचुलेशन, अगर नहीं किया तो डोंट यू वरी, अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी भी दिन मुकम्मल नहीं हुआ, आप जरूर अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अपने हौसलों को कभी मत बताइएगा कि परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताइएगा कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। अगर अभी तक दिन मुकम्मल होने तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, या फिर आपने जो गोल सोच रखा था वो अचीव नहीं होता, तो बस इस बात जो है अपनी परेशानी को मत बताइएगा, बल्कि मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर आज के दिन में कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप उन लूजर्स में शामिल नहीं होते जो थक हार कर बैठ जाते हैं, बल्कि आपका काम तो उन तमाम परेशानियों को खुद से दूर भगाना है। देखिए, कभी भी किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आपको बेहतर लगता है बस आपने उसको कर लेना है। वो कहते हैं ना कि वक्त के दरिया में जो तीर आप छोड़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो साहिल तक ही पहुँचे। सेम एज इट इज़, कभी भी जब भी कभी आप वक्त की मिसाल लेते हैं तो आपको पता है कि वक्त कभी भी किसी एक शख्स के लिए नहीं रुकता, कभी भी बल्कि किसी शख्स के लिए नहीं रुकता वक्त। तो आपने वक्त की रफ्तार का रोना नहीं रोना, इसके पीछे नहीं भागना, बल्कि इसके साथ साथ चलना है, तभी कामयाबी हासिल कर सकते हैं जब वक्त के साथ चलेंगे। दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग आप देखेंगे, उन तमाम लोगों ने वक्त की पाबंदी की, तभी वो कामयाब हो सके। मैं आपको बताता हूँ ना कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दें। बस अपने उन ख्वाबों के पीछे लग जाइए जिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपने एक उम्र सर्व कर दी है। ऐसा ना हो कि ख्वाब वही रह जाए और आप पूरे हो जाएं। तो आपके पूरे होने से पहले पहले ख्वाबों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ज़िंदगी का राज ये भी है कि कामयाबी आपको हमेशा ज़ाती तौर पर गले मिलती है, लेकिन नाकामी हमेशा दुनिया के सामने आपका तमाचा मारती है। यही ज़िंदगी होती है। कामयाब होना चाहते हैं ना, तो बस अपने गोल पकड़िए और उसके पीछे लग जाइए। छोड़ दीजिए दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहते, लोग सिर्फ आपका तमाशा देखते हैं तब जब आप नाकाम होते हैं। लेकिन आप तो कामयाब तरीन लोगों में शामिल होना चाहते हैं ना, तो बस फिर मेहनत जारी रखिए।
शामिल कर हम प्रोग्राम में एक और खूबसूरत सी आवाज़। इस आवाज़ के उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फॉर 97.1 FM, ऑल्सो डैब।

जी हाँ जी, मैंने तो तेरे नाल नचना खूबसूरत सा ट्रैक आपने एंजॉय किया। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा इस ट्रैक। इस बार आपका मेजबान उस्मान खान अगेन आपके साथ साथ। उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ साथ हैं और आप फजा 97.1 एफएम की इस ट्रांसमिशन को जरूर एंजॉय कर रहे हैं। बात करेंगे जनाब उन लोगों के हवाले से जो इस वक्त मुझे टैक्सी या कैब ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं। आपको बताते चले जनाब कि आप लोगों को मैं बिल्कुल नहीं भूला, मैं आपके साथ साथ हूं और आपकी मर्जी के जो ट्रैक हैं उनको भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया जाएगा। आई नो वेरी वेल कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका मूड कैसा होता है, आप कुछ ना कुछ खूबसूरत सा रोमांटिक सा सुनना चाहते हैं ताकि आप उसके साथ साथ खुद भी ड्राइव करते हुए गुनगुना भी सकें। सो बिल्कुल मैं इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक है मेरे पास, मैं उसको शामिल करूंगा। लेकिन उससे पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे कामयाबी के हवाले से, थोड़ी सी डिस्कशन इस पर मज़ीद करेंगे, उसके बाद फिर आपके ट्रैक की जानिब चलेंगे। समय हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते कोई भी दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप तभी हारते हैं दुनिया से जब आप खुद जहन में ये बात बिठा लेते हैं कि अब आप हार गए हैं। मेक श्योर कर लीजिएगा कि क्या वाकई आप हार गए हैं, क्या आपकी जिंदगी में सभी रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं, कोई भी एक रास्ता ऐसा नहीं बचा। नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि आप चाहे आपको लगता है कि दुनिया में हर रास्ता आपके लिए बंद हो गया है, उसके बावजूद कोई ना कोई एक रास्ता ज़रूर खुला रहता है, बस देखने वाली आँख चाहिए। अब होता क्या है कि जब इंसान नाकामी की तरफ जाता है या नाकाम होता है तो उसे हर तरफ से रास्ते बंद ही मिलते हैं, कामयाबी का उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। उसकी असल वजह ये होती है कि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और वो ना चाहते हुए भी खुद को हारा हुआ तस्लीम कर लेता है। और जब एक हारा हुआ इंसान को आप देखें तो उसे हर तरफ मायूसी ही नज़र आती है, हार ही हार उसे नज़र आती है। उस वक्त आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस काम करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ज़िंदगी में कभी भी कोई भी इंसान जो है मुकम्मल तौर पर जीतता नहीं है। हार जीत जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, जिस तरह गेम में हार जीत होती है उसी तरह ज़िंदगी में भी हार जीत होती रहती है। बस आपको इतना सा माइंडसेट होना चाहिए कि जब आप किसी भी एक जगह से फेलियर फेस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं, ये फेलियर जो है ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी फेलियर नहीं है, ज़िंदगी में अभी बहुत से चांसेस बाकी पड़े हुए हैं। कोई ना कोई रास्ता आप ज़रूर तलाश कीजिएगा, कब जब दिल आपका करे तब आप कोई ना कोई एक रास्ता ज़रूर निकाल ही लेंगे। जब आप ख़ुद को मुकम्मल हारा हुआ महसूस करेंगे फिर खुले हुए रास्ते भी आपको बंद नज़र आते हैं। लेकिन जब आप हारने के बाद भी ये सोचते हैं कि इट्स ओके, अभी भी एक मौका है, तो आपको कोई ना कोई रास्ता खुला हुआ ज़रूर मिल जाता है। कहते हैं ना कि हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर उसका अंजाम यूं छुपा होता है जैसे हर बीज के अंदर एक दरख्त छुपा होता है। तो बस अपनी सोच को थोड़ा सा बुलंद कीजिए, आगे लेकर बढ़िए सोच को, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके अंदर एक पौधा नहीं बल्कि पूरा दरख्त है। अवल जनाब, हमारे और आपके दरमियान कमर्शियल ब्रेक हायल होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो जितना सा टाइम रह गया है उसमें मैं शामिल कर रहा हूँ अपने तमाम तर उन दोस्तों और भाइयों के लिए ट्रैक जो इस वक्त ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके लिए मैं एक खूबसूरत सा रोमांटिक सा ट्रैक लेकर आऊँगा जिसको सुनकर आपका मज़ीद जो है वो दिल करेगा ड्राइव को करते हुए साथ साथ गुनगुनाने का। सुन लीजिए इस खूबसूरत सी आवाज को, एंजॉय कीजिएगा इस रोमांटिक सॉन्ग के उस पार। होगी आपसे फिर से मुलाकात, डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फॉर 97.1 एफएम एंड डैब, आल्सो प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव ज़ोन।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
3: जी हाँ जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। आ चुके लौट के वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ एक छोटी सी प्यारी सी चुनमुन सी कमर्शियल ब्रेक आपने एंजॉय की, और उस एंजॉयमेंट के बाद अब वक्त आन पहुंचा है जनाब कि हम बड़े मजीद आगे। ओके मुझे कहते हैं उस्मान खान, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM नॉटिंगम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव ऑन। वेलकम उन तमाम तर लोगों का जिन्होंने अभी अभी फजा 97.1 FM टैप पे हमें ट्यून कर रखा है। वक्त आन पहुंचा है जनाब के अब थोड़ा सा अरेबिक टच दिया जाए। मेरे तमाम

0: تختفي في الدور.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays.
2: Foot tapping music.
3: Huzza 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना
5: इट्स कमर्शियल टाइम.
6: ओखाना कढ़ाई की खुशबू, गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी.
7: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
6: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा. जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
7: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी.
6: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा.
7: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
6: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का.
7: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है.
6: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी.
7: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें.
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
7: पिशावरी डेरा.
8: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया. अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए.
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
7: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स. चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं.
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स.
7: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं.
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम. तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट.
7: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Huzzah 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to Radio Fazer on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: के संभल।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: ओखाना काय के खुशबू, गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
3: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
2: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा।
4: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
5: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
4: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
5: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
4: और अंगारों भी प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
2: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
5: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
6: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
5: पिशावरी डेरा।
7: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
8: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
8: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
8: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
9: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ।
10: You are listening to Radio Fazaar 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07-59-150-669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग टू 97.1

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक.
5: फजान 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodsboro Road, Nottingham NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.